0: બરાબર 6 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રિલે કરાશે.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં સૈયદ ફિરોઝી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
2: हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: भारत और इटली ने कृषि एवं खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग

0: हड़ताल बहाल करने के लिए 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलटा विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडे ने कांग्रेस में अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नगरना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: આકાશવાણીનું આ ભુજ કેન્દ્ર છે। પ્રસ્તુત કરીએ વિચાર બિંદુ। આજનો વિચાર છે પરિવર્તન। પઠન અવનિ ધોળકિયા।
2: વિચાર બિંદુ।
3: દરેક પરિવર્તન માણસને વધુ પરિપક્વ બનાવે છે। દરેક પરિવર્તન સાથે નવા અનુભવો મળે છે। પરિવર્તનશીલ બન્યા વગર છૂટકો જ નથી। જે માણસ ગતિ નથી કરતો એને કદીય પ્રગતિ થતી નથી। એક જ સ્થિતિમાં પડી રહેવાથી મનને વિચારોને થર બાજી જશે। મનમાં પરિવર્તન લાવ્યા વગર પ્રગતિ થતી નથી। જૂનું ગમે તેટલું દિલચસ્પ હોય તેને ભૂલવાનું અને નવું નાપસંદ હોય તો પણ અપનાવતા શીખીએ। જૂના ઘર જોડે કેટલીય માયા બંધાયેલી હોય છે, છતાં નવા ફ્લેટમાં જૂની સ્મૃતિ છોડીને સુખ સગવડ માટે આપણે જવું પડે છે। સમયની સાથે બધાએ ચાલવું પડે છે। પરિવર્તન માત્રનો અસ્વીકાર કરવાથી તે ગંધાતું ખાબોચિયું બની જાય છે। આપણે સૌ પરિવર્તનના પરિવ્રાજક બનીએ। પરિવર્તન માટે તમારી જાતને સદા તૈયાર રાખો।

0: विचार बिंदु।
1: आप सांभी रहे हता विचार बिंदु, परिवर्तन पठन अवनी धोड़किया, प्रसारण आकाशवाणी ना भुज केंद्र पर थी करवामां आव्यु। श्रोता मित्रों, हवे प्रस्तुत करिए भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना। शुरुआत करिए तुलसीदास नी रचना साथे, स्वर नारायण स्वामी नो।

राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूँ। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहाँ से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले, कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

0: ایشون برای سه مطمئن شده. البته شرط پرکشن ها سوگانگسیا پلی چون کنونتی ریشو دو نرگده او اپیست ها بھارتی ارتو ویجنان ویدھاگین رکت برانی سنچیترا پرکھیٹ گایت اتر پردیش سے مدھ پردیش سے ویدر بلسی جا بھاگیشو آنانی دن تین یاوت تاپا ترنگ کہا تیورا تاپا ترنگ سے ستھیتی ہے زمتی ویدھاگین اولی والتن یا تھریانا چنگیگر دلی پنجاب بیہار چھتیسگر تبیہ اندر پردیش ہیمانچر پردیش اوڈیشا راجستان ترنگانا اتراکھنڈے جا اتاب شاہ دیو پر ستھیتی ہے IPL इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट् लीग् प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोल्कत्ता नैट् रैडर्स् दलेन मुम्बै इण्डियन्स् दलं चतुष्टोमकैः पराजितम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात् टैटर्स् दलम् अहमदाबाद् नगरे चेन्नै सुपर् किङ्ग्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए. प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
1: हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया. भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे. वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया. इटली के प्रधानमंत्री

कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उलान मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटेनर तैरों के बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नवंबर में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस कोस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से जा रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सौरभ मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों को नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फाटा विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की

0: बहुत समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत के

0: बनाए जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से मुलाकात की, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्री कोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुदामा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटेनर कारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। निबंधन में कई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की।
1: मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य

इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलटा विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलटा विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने मतदान केंद्रों के अंदर

0: से छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार में प्रेम पिता कैंडिडेट है जहांगीर खान, मुख्य पल तक में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी

जी धन्यवाद कमलान, इसी जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और नेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।

श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन मैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद अब भी बरकरार है। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारत ने अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से जा रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सरफी रोजी। धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश है और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण।

को बनाए। पत्र में सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को भेद बुटाया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान के लेखिका यांग शुआनजी और अनुवादक लिनकिन को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका समेत कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों को नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम

समाचार की चुनाव। इसके साथ ही समाचार के ब्लॉक का यह समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy

0: नहीं सुन रहे हो आकाशवाणी जो भूज केंद्र
1: आकाशवाणी जो ही भूज केंद्र आए रजू करियो ता बच्ची कार्यक्रम हलो करियो गाल कार्यक्रम सुन दल मणि भावेंद्रे के जिगर जोबन पुत्रा जा राम राम राम राम
2: दरवरे 21 मे जो समग्र विश्व जी अंदर विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की उजवनी करे में अचे दिवस उजवे जो मुख्य हेतु विविध संस्कृति परंपरा भाषा अने जीवन शैली प्रत्ये सम्मान अने समझण केळवे जी आए यूनेस्को द्वारा ई दिवस जी शुरुआत करे में आवे भी जेंती करीने समग्र विश्व जी अंदर शांति सहिष्णुता अने एकता जो संदेश वधारे मजबूत थी हाने पाटा भारत देश का नागरिक है जिन जो मुख्य सूत्र जाए विविधता में एकता इन जो मतलब इन थी तो के पात अलग अलग धर्म भाषा वेशभूषा खानी पीढ़ी अने परंपरा ई दरेक वस्तु बहु नजीक थी ने रहियो भारत जी अंदर अलग अलग धर्म भाषा वेशभूषा खानी पीढ़ी अने परंपरा जा मारु भाईचारे थी रोनता अने समग्र विश्व जी अंदर विविधता में एकता की रखा जे इन जो संदेश पुजाई था गुजरात जो गरबा पंजाब जो भांगड़ो अने दक्षिण भारत जो भरतनाट्यम ई मळे जो संगम एटले भारत दरेक रंग ताजे भारत ते वधारे सुंदर लगे तो अने भारत देश के समग्र विश्व जी अंदर वधारे सुंदर बनाए तो रंग अलग है रीत अलग है छता दिल एकड़ो है रंग अलग है रीत अलग है छता दिल एकड़ो है भाषा अनेक छता भारत जो संदेश हेकड़ो है संस्कृति जो संगम जड़ा प्रेम थी थिए तो उदाज मानवता जो प्रकाश वे तो अने जे देश में मानवता जो प्रकाश वे उ देश ज समग्र विश्व जी अंदर शांति जो संदेश दे सके तो सांस्कृतिक विविधता जो आए से पाके सखाई थी के दरेक व्यक्ति दरेक समाज इनजी पंजी अलग ओळख है कोई जी भाषा अलग है कोई जी वेशभूषा अलग है कोई जी परंपरा संस्कृति अलग है इनसे मतलब ये ना है कि ये पांथी अलग है साची प्रगति जो को आए ये तदे थी यदि जड़े पा अलग अलग विचार संस्कृति वेशभूषा साथे गनी अने एने पुठिया पा कम कहीं होता तो ईज सची प्रगति है अने एक बेजे संस्कृति जो जड़े पा सम्मान करी होता ईज सची प्रगति है आज जे आधुनिक युग जी अंदर टेक्नोलॉजी अने इंटरनेट जे कारणे समग्र विश्व जी अंदर जो को अलग अलग संस्कृति है अलग अलग जो को वेशभूषा है जो बाके परिचय तो थई गयो है पा इनके जानो था पण आजे संस्कृति अने पाजी जो को परंपरा हुई इनके भूली ना आवे ने जो पा दरेक के सम्मान करियो था पण पाजी परंपरा अने संस्कृति के पण पा जीवन रखेला करीने प्रयास अचूक कयो पाजी लोक कला पाजो लोक संगीत भाषा अने परंपरा जो भूली वंदासी तो आवनार पेढ़ी पंजी ओळख भूली वंदी इनके खबर नहीं थे कि पा कई संस्कृति जा मारू यो एटले लायच युवा ने के पंजी संस्कृति साथे जोड़ायनु खबदो सम्मान करनु खबदो अने ई संस्कृति बे देश के बे जगह ते बे भाग में बुझायनी खबदी એની જે સંસ્કૃતિ કે પા રિસ્પેક્ટ કરતા સી સન્માન દિંદા સી અને પાજી સંસ્કૃતિ જી ગાલ પા ચૂક કહી દસ સંસ્કૃતિ ઈ માત્ર એકડો વસ્ત્ર કે ભાષા નહી બાકી થી કે પા સંસ્કૃતિ જી ગાલ કર્યો એટલે પા કે કેરા કપડા પહેરના કઈ ભાષા બોલની આયો ને સંસ્કૃતિ ઈ માત્ર એકડો વસ્ત્ર કે ભાષા નહી ઈ તો પેઢીઓ જી લાગણી જો વારસો હોય જે લોકો પંજે મૂળ કે સન્માન કરીએ તા રૂટ કે સન્માન કરીએ તા એ જ દુનિયા મે સચ્ચી ઓળખ બનાવી શકે તા એટલે પાજો પાજો રૂટ ભૂલી વંદા સી પાજો રૂટ કે ભૂલી ને આ બે જેડો બને જે કોશિશ કરતા સી તો એ શક્ય નહીં થી આ જે વિશ્વ મે રોતા ઉડા દરેક સંસ્કૃતિ જા માળુઈ દરેક ભાષા જા માળુઈ દરેક પરંપરા જા માળુઈ દરેક જે પરંપરા ભાષા વેશભૂષા એને સન્માન દીયો હતા પણ પાજી ભાષા પાજી સંસ્કૃતિ પાજી પરંપરા એ જો વિશેષ મહત્વ ખુલાયા હે એ પાકે યાદ રખેજી જરૂર હે વિશ્વમાં શાંતિ અને સહઅસ્તિત્વ લાય કરીને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા ખૂબ જરૂરી છે. ચલો લોકો એટલો બધો સમજેતા, જે સંસ્કૃતિ સમજેતા, એનો ભેદભાવ, દ્વેષ, અસમજણ ઓછી થઈ હતી. સંગીત, નૃત્ય, સાહિત્ય અને કલા લોકો જે દિલ કે જોડે જો કમ

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत।
0: नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी
0: यहाँ सालाना

पहले सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो। दीपू जी ओ दीपू जी, दादी

0: जल्दी से।
1: सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ, एक हिरन।
1: शाबाश। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश। एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे

0: रोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: गरिमा गरिमा जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़ी मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं। राम जी अब तुम सो जाओ, दीपू बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी ना?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: याद है? अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
3: किशनपुर गांव में अटको मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
4: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
5: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
4: हाँ,
5: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
4: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
5: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
4: हाँ।
6: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़,
4: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
5: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
5: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं।
3: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
4: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
5: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
5: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
4: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, मैं कटहल दूंगा।
4: अच्छा ठीक है,
5: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
5: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।

0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: ये हमारे दोस्त हैं। जीवन में हरियाली लाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
2: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन भी रहा था कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT, प्रसारण आकाशवाणी ना भुज केंद्र पर थी करवामां आव्युं। बराबर 9:30 वागे समाचार हेडलाइन अपाशे।

0: क्या चालिया मम्मी ते मैं राशन कार्ड लेने उतावड़े।
1: अरे बेटा राशन कार्ड मा नाम खोटू आव्यू छे, हवे कचेरी ए जवू ज पड़शे।
0: अरे मम्मी क्या नथी जवानू, आ जो सुगम डिजिटल गुजरात।
1: पर बेटा आमा सुधारो थशे, मारे फरी लाइन मा तो नहीं उभा रहेवू पड़े ने।
0: ना सुगम छे एटले बधुज शक्य छे।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ना नेतृत्व मां अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयत्नों ना फल स्वरूपे हवे आवक नो दाखलो, जाति नु प्रमाणपत्र अने रेशन कार्ड ने लगती 20 थी वधु सेवाओ हवे ऑनलाइन। तो बस घरे बैठा अर्जी करो अने तमारा दस्तावेजो व्हाट्सएप पर मेळवो। आज ज मुलाकात लो www.digitalgujarat.gov.in। सुगम डिजिटल गुजरात, लाइन थी ऑनलाइन।

0: चिकित्सा मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: जीव गुमावाना अधिकतम कारण होय छे गुमराहू अने दाजवू। थोड़ी सावचेती जीव बचावी शके छे। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल वगैरह जेवी सार्वजनिक जगह पर अग्निशामक उपकरणों तपासी लेवा तथा आपातकालीन द्वार विषय माहिती मेळवी लेवी। आग लागे त्यारे लिफ्ट नो उपयोग करवो नहीं अने आपातकालीन द्वार के दादरा नो उपयोग करीने तुरंत नीचे उतरी जाओ। कोई पण संजोगों मा पोताने कोई पण रूम के ओरडा मा दूरी ना लो। आवू करवाथी धुमाड़ा थी गुमड़ावानी शक्यताओ खूब वधी जाय छे। आग लागे एटले मोबाइल मा फोटा पाड़वानू के भीड़ करीने उभा रहेवानू टाळो। तात्कालिक 101 पर कॉल करीने सूचना आपो। थोड़ू धैर्य, थोड़ू ज्ञान, सुरक्षित रहेवा राखो ध्यान। GSDMA गुजरात सरकार द्वारा जनहित मा।
3: मित्रों, एक्शन नो धमाको होए के प्रेम कथा, आदित्य चोपड़ा नी फिल्मों ए दर्शकों ने दरेक प्रकार नो मनोरंजन आप्यू छे। एवी ज एक सुपरहिट फिल्म हम तुम। गीत सांभळीए अलका याग्निक अने बाबुल सुप्रियो ना स्वरमा।

0: है मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सांभी रहा छो लोक संगीत। हवे सांभळीए जय श्री लिंबाणी ना स्वर मां आ लोक गीत।

0: सुनता आमणी जो मन पसंद कार्यक्रम फोन इन आंजी पसंद आमणी श्रोता मित्र के आंजी रेडियो दोस्त हर्षा ठक्कर जा जजा करी रे राम राम राम राम।
1: हेलो
2: हाँ
1: फरजाना किए आयो असी मजा में आई हो बराबर ही बहु गर्मी पैती रुजी गर्मी तो दुबा है मते हाँ सौ टका
2: गर्मी में आम का मने मने कुल्फी मिली
1: हाँ आई मने याद न दे रहा हूँ मुके स्टूडियो में बैठे बैठे चाहता क्यों गीत सुन था आज वाह वाह क्या क्या याद करी ने सुन है चाहिए जो
2: याद तो हाँ
1: नींद सुनी गलो को वाह वाह
2: याद ताजो करी गलो
1: हाँ चौकस चौकस चौकस के रहे यहाँ साथ केंद्र नाम गिनना है
2: मम्मी कुलसुम है
1: चौकस मणि के सुनाई दियो बरोबर ने चौकस भले आज हेलो फोन इन आंजी पसंद
3: फोन इन आंजी पसंद कार्यक्रम में वर्षा देना ही बोलो था
1: हाँ जी बोला थी अब्दुल भाई बोला था
3: हम खत्री कॉलोनी नवान जर की गाल पे तो मुझे ना है अब्दुल कादिर खत्री
1: हाँ चौकस अब्दुल भाई है हो
3: हाँ बस एकदम बराबर कह रहा था पूछने मुझे रोड पोई खींचे तेरी और लिए जा बराबर था एक अड़ो गीत की देखो लड़के में रात को नहीं अड़ो अड़ो गीत सुनो टकी पतंग फिल्म जो गीत है हमारे आवाज में संगीत आर टी वर्मन जो संगीत है मुझे लगे तो खूब सारा था इन्हें जाकर जो को पढ़ते थे पिछाई चो राजस्थान कलाकार तो अपना दिखा लेते
1: बराबर
3: अब जो कार्यक्रम में टकी पतंग के लिए गीत मुझे सुनाई गई बराबर
1: चौकस सुनाई गयो आसाते ब्याह कोई सुने लग मंगे था
3: ठाकुर
1: भले भले सुनाई
3: भले भले
1: आज

0: उन्हें नंदी पसंद,
1: उन्हें नंदी पसंद। राम राम कोला जी का की जानकारी है तुझे?
0: हाँ हाँ बोलो।
1: अरे हिरेंद्र जी।
0: हिरेन भाई क्या है वो? मौज है, गर्मी कड़ी है।
1: कठी मुके नसी आते हैं, जितली थोड़ी आते हैं।
0: कहीं जवान दो ना है, जितली अच्छे थी इतली। बोलो बोलो।
1: मूल मुका क्या आ रही है? थोड़ी थोड़ी मुके
0: हल्दी है साके थोड़ी थोड़ी। क्योंकि
1: कौन बोल बोल बात कर रहा था मैं?
0: हाँ वो हर्षा ठक्कर बात कर रही थी। जी जी
1: बराबर बराबर। तीन जो नाम है हम जरा ही प्यार के
0: भले सुनाए दियो।
1: मेरा शब्द हो बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, फिर भी नवी लगे जिला
0: चौकस सुनाए दियो।
1: तो सुन दीजिए बिन।
0: हाँ साथे के रहा है
1: नाम तो बना वहाँ को मार ग्रुप से।
0: हाँ हाँ
1: ચોક્કસ
0: ઘણી કે સુણાઈ ડીંદાસી

0: हेलो फोन इन भूज
1: फोन इन आंजी पसंद
0: हाँ भूज से कल्पा जयदेव उपाधि बोला थी की आए हर्षा में
1: हर्षा में नहीं किए हो
0: बस एकदम मजे में आज फिल्म जो नाम है मुकंदर का सिकंदर और गीत जा बोले

0: हेलो फोन इन आंजी पसंद
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार बस मजा में आई की आयो
1: हांजी
0: हर्षा बात कर
1: हरिद्वार ऋषिकेश

0: man. And then I want to go to Argento, the shit man, or you got your man, or sidewalk, I think that it, you know, I think
1: that,
0: I think that,
1: गर्मी तो बात छड़ने हो ग्रेट भाई कच्ची
0: तो आया है तो इधर ताके लगे तो के इधर तो बड़ी गर्मी है
1: बहुत गर्मी आए
0: बहुत उधर इतनी गर्मी नहीं लग गया था तो अच्छे कलेक्शन में ऐसा ही फरमाइश आए बाहर आने तक फिल्म जो नालू आए नहीं नहीं जा बोल आए गर्मी तेरी चोटी है पनाह तेरा लाल तो ये नहीं नो करनी कहाँ से रहती है

0: हेलो, फोन है ना जी पसंद।
1: हेलो, आपका सर गुड।
0: हाँ जी,
1: हेलो।
0: हाँ बोलो बोलो।
1: सचिन
0: हाँ सचिन भाई, क्या हो? एकदम बराबर रही हूँ। भले क्या आंजो, बहुत स्वागत है। हर्षा ठक्कर बात करती सचिन भा। हर्षा ठक्कर।
1: हर्षा ठक्कर
0: आजा घने पत्र वाचे ही आऊं आपनी पसंद में।
1: पत्र
0: जी जी जी पूछो था तबियत पानी बराबर
1: असी
0: भुज में बहुत गर्मी पड़ती सचिन बा।
1: गर्मी तो होती है, रात को गर्मी
0: बपोर जो बहुत गर्मी पड़ती। ध्यान रख जा, ठंडा पानी बहु पी जा ना, शेरड़ी जो रस पी जा। चौकस चौकस क्यों गीत सुन दासी आज पा?
1: मुके एक गीत सुनो है।
0: हाँ
1: वो है ना नाजो फुलियो बद्रीनाथ की दुल्हनिया।
0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वाह वाह। क्यों गीत सुन दा?
1: गीता ने आपने
0: कोई भी सुनाई दिया?
1: ये तो नाले तो आए।
0: अच्छा की वांदो ना है आके याद अटे साडे चोजा आ साथे केर के रही
1: आकाशवाणी मित्र किया है
0: सुनाई पसंद जो गीत
1: तो आए गीत तो छा
0: याद आके
1: याद न तो आते
0: की वांदो ना है। आऊ कोई पण सुनाई दिया इन फिल्म जो
1: आए कोई पण सुनाई दो ना कई बार बार ना
0: भई यार आके याद अटे तड़े फोन करी जा। हां
1: हां ये बात सच्ची।
0: भले सचिन बा आओ जो ध्यान रख जा।
1: आओ
0: ध्यान रख जा।
1: चौकस चौकस।
0: हां अच्छी जा
1: चौकस। भले भले।

0: कौन है नानजी पसंद?
1: हांजी
0: बस मजा में आई हूँ। की आयो
1: भाई?
0: हाँ अलीबाग की आयो?
1: अरे एकदम मजा में
0: मेरे बरोबर आई। बहुत गर्मी पैती भुज में था चौकस सुनाई दियो ચોક્કસ આ સાથે કરી આ સાથે બે સુણતા એ ગીત કે
1: અમીનાય અને પુત્ર વધુ

0: में टैक्सी प्रोग्राम आए हैं।
1: हाँ हाँ टैक्सी प्रोग्राम आए
0: गानों से जो आए।
1: हाँ हाँ बोलो।
0: नरेश भाई बोला तो
1: नरेश भाई क्या है वही
0: एकदम बरोबर गर्मी में बैठाई हूँ।
1: बहुत गर्मी थी इतनी बेला कोरो करी हूँ।
0: गर्मी
1: थी सीजन आए गर्मी जा फायदा है ना ब्याह
0: फायदा
1: जाम है आंबो पाके गर्मी में खादे ला मिले शेरड़ी चिक्का रचे बे वही चो आऊं तो चा सच्चा एकदम सच्ची बात
0: है
1: सच्ची बात क्या
0: तकलीफ
1: पाँ कच्छ वाला कोई तकलीफ से ध्रजो ही नहीं हो ना चो हाँ कुदरत के चो आई आशीर्वाद रख जा सामथे हथ रख जा जो अने सामनो करे जी ताकत पण दी जा असा के
0: चौकस
1: हाँ करो करो था नरेश भाई करो बात करो था ओ हो वाह वाह रेडियो रिपेयरिंग जो था आई सतत असा साथे जोड़ाए लाए हो को करो बात करो था नरेश भाई बड़ा समाज होगा मैं जो था हाँ सौ टका हाँ जड़ा श्रोता जड़ा रोंदा में वो गांव नेशनल लेवल सुधी विनेज
0: साथ
1: हाँ राष्ट्रीय लेवल सुधी

आप सुन रहे हैं कच्ची कार्यक्रम फोन इन आपनी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुति हर्षा ठक्कर। कार्यक्रम नु प्रसारण आकाशवाणी ना भुज केंद्र पर करवामा आव्यू।

गौरवशाली प्रसारण ना अवसरे आप सबनो हार्दिक स्वागत छे विशेष कार्यक्रम सूर संगात मा भाव जायकाओ थी आकाशवाणी संगीत संस्कृति अने कला ने घर घर में पहुंचाड़वानो पवित्र कार्य निभाव्यु छे अने अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों ने एक मजबूत मंच पूरो पाड्यो छे। सूर संगात विशेष श्रेणी में आप आकाशवाणी साथ जोड़ेला प्रतिष्ठित गायक और कलाकारों ने जो पोता सुरो थी श्रोताओं दिल में विशेष स्थान बना चुक्या है। संगीत यात्रा अनुभवों और यादगार पड़ो साथ सूर संगात आपने लई जैसे एक मधुर और आत्मीय संगीत प्रवास पर।

0: चार संवेदना आरोखा सफर में साथ जोड़िए प्रस्तुत कार्यक्रम सूर संगार संगार। नमस्कार श्रोता मित्रों, आकाशवाणी 90 वर्ष गौरवशाली अवसरे आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। आजनी आ विशेष मुलाकात में आपणे आवकारीए छीए एवा ज एक प्रतिष्ठित अपग्रेड कलाकार ने, जेमणे वर्षो सुधी पोताना सूर लय अने साधनाथी श्रोताओना हृदय में अनोखू स्थान बनाव्युं छे। चालो पंडित महेन्द्र टोके साथे तेमनी संगीतमय यात्रा, अनुभव अने आकाशवाणी साथेना अमूल्य संबंध विषय वधु जाणीए। प्रणाम पंडित जी।
1: नमस्कार,
0: आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: पंडित जी। सबसे पहले आप ये बताएंगे आप किस घराने परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके प्रारंभिक गुरु कौन थे?
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत में 1940 के दशक के बाद जो घराने प्रतिष्ठापित हुए या जिन्होंने प्रतिष्ठा ग्रहण की, उसमें इंदौर घराने का नाम
0: जी
1: प्रमुखता लिया जाता है। उसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है
0: जी।
1: और उस गायकी का अभ्यास में अभी भी मैं अपने आप से आपको जोड़ दिया है
0: जी। तो आपके प्रारंभिक गुरु कौन थे, आपने कब सीखना शुरू किया?
1: मेरे पिताश्री पंडित डीपी टोके
0: जी,
1: जो सीधा उस्ताद अमीर खान साहब से 1952 के साल में मिले, और पिताजी ने सबसे पहले अमीर खान साहब का आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, उसमें सुबह का राग कोमल ऋषभ असावरी वो सुना और उन्हें आपा खो दिया।
0: क्या बात,
1: तब से उनको बड़ी उत्कंठा रही, उत्सुकता रही और बेताब थे कि अमीर खान साहब को प्रत्यक्ष कब मिलूं और उनके पैर कब छूं। तब ही वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और अपने पिताजी माताजी की अनुमति बिना ही
0: जी,
1: उनकी सूचना के बिना ही बाय सेलिंग हिज गोल्डन चेन एंड रिंग ही रैन अवे टू कोलकाता।
0: ओके,
1: और तभी अमीर खान साहब 6-1 महीने पहले कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे बड़े गुलाम अली खान साहब के कहने पर। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो खान साहब के से 8 साल बड़े थे, बहुत चाहते थे अमीर खान साहब को। बड़ी प्रतिष्ठित फिल्म जिसने बहुत नाम कमाया, बैजू बावरा तानसेन और बैजू के बैजू नायक के जीवन पर आधारित ये फिल्म, बड़ी रोचक फिल्म। उसमें अमीर खान साहब ने पहली बार तानसेन के लिए अपनी आवाज दी थी।
0: क्या बात है।
1: तो उस फिल्म के प्रचंड यश के बाद सारे हिंदुस्तान भर अमीर खान साहब के नाम का नाम फिर से चर्चा में आया। बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनसे कहा कि अमीर खान तुम बंगाल आ जाओ, कलकत्ता आ जाओ, बंगाल तुम्हारी पूजा करेगा। तब खान साहब कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे।
0: ओके,
1: और सीधा उनसे मिलने गए थे।
0: तो आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हुई?
1: मैं वैसे औपचारिक जिसको तालीम कहते हैं प्रत्यक्ष थोड़ी सी देरी से शुरू हो गई, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक था हमारे बहन भाइयों में, और मैं 11वीं कक्षा के समर हॉलीडेज में पापा ने सबसे पहले मुझे तानपुरा पकड़ाया। और शेषता ये था कि सुबह 2:30 बजे जगाते और शुरुआत के 8-9 दिन तो मैं रो के वापस चला गया, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी।
0: और आपको पढ़ाई पसंद थी, ये नहीं करना
1: जी। और सभी बहन भाई मेरी माताजी सो रही हैं और मुझे अकेले को जगा रहे हैं
0: जी।
1: तो बाद में 16-17 दिन तक मेरी माताजी साथ में बैठी जस्ट हौसला बढ़ाने के लिए। और फिर पापा ने एक दिन कहा कि मेरी माताजी का नाम दुर्गा
0: जी,
1: ये ऑर्डर हर कि ये गो शिस्त जहाँ है, अनुशासन जहाँ है वहाँ लाड़ प्यार
0: नहीं।
1: बड़े सख्त गुरु रहे।
0: एक माता का हृदय होता है ना हमेशा के स्ट्रिक्ट कैसे रहा जाए वो पापा को पता है, पर माता जी को लिए तो बेटा ऐसा है कि पैंपर ही करना है
1: वाकई। लेकिन फिर माँ ने ये मुझे समझाया कि बेटा तुमको गाना अच्छा लगता है ना, और तुम कहते हो ना मुझे आमिर खान साहब जैसे सुर लगाने हैं, तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर निरंतर 5.5 वर्ष तक,
2: क्या बात है,
1: सुबह की सर अभ्यास की तालीम वो जारी रही। बाद में पापा रिलैक्सिंग चेयर में बाहर बैठते थे मेरे कमरे के, बाहर से निगरानी रखते थे, तो ये सतत निरंतर चालू था।
2: ओके पंडित जी, हर घराने की एक अलग गायकी होती है, आप अपने घराने के गायन शैली जो है लयकारी और बंदिश के दृष्टिकोण को एक वाक्य में कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत ये एक उपासना का माध्यम कहा गया है। अब ये बात अलग है कि इसको करने वाले, इसको समझने वाले और निरंतर प्रयासरत बाकी कलाकार भी इसको कमर्शियल रूप दे दिया
2: जी।
1: लेकिन ये रोजमर्रा जिंदगी का और जिंदगी चलाने का साधन नहीं हो सकता है, अर्थार्जन का साधन नहीं हो सकता है। संगीत तीन प्रकार का मैं मानता हूँ, एक श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए जो संगीत किया जाता है वो, दूसरा खुद के लिए गाया बजाया जाने वाला संगीत, और तीसरा खुद के लिए और अनसीन फोर्स अगर आप मानते हैं
2: जो इनर फीलिंग्स आता
1: है, हाँ, तो उसको हर चीज एड्रेस करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला संगीत, और वो तीसरे प्रकार का जो संगीत है वो जो कल्पना है उसका अनुसरण आमिर खान साहब की गायकी में प्रतीत होता है। ये मुझे बहुत भाया, और बचपन से हुआ ये कि मैं पुणे में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, मैं थोड़ा सा गेम्स में भी आगे रहा, तो टेबल टेनिस में नेशनल्स खेला हूँ, सब जूनियर और जूनियर्स में, 11th स्टैंडर्ड में था, और मेरा तालीम एक्चुअली शुरू हुई तब मैं 8-8 घंटा शिवाजी स्टेडियम में जाता था, सुबह 4 घंटा शाम को 4 घंटा। और एक दिन तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के मेरे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 4th लेवल के एग्जाम, तो उसका रिजल्ट लेके मैं वापिस आया घर, और पापा आवाज रियाज कर रहे थे, शाम का समय था, तो पापा मारवा राग गा रहे थे।
2: अच्छा।
1: मैं टेबल पर मेरी आई ने, माता जी ने बिठाया, चला गया ना, आई वॉज इन टू टीयर्स, और निःशब्द था,

0: पापा फिर बाहर आए और पापा ने देखा कि ये थोड़ा सा विचलित हुआ है, विचलित माने बाबे बोलते हुए बहुत सम्मोधित हुआ था। फिर पापा ने यही पैटेड ऑन माय बैक, सर पे से हाथ घुमाए और खान साहब की, अमर खान साहब की मारवा और दरबार की पहली लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड वो चलाई। तब तो मैं इतना स्पंदन करके रोया कि फिर, और वो आप उसको गहरी चोट समझ सकते हैं या मान सकते हैं या कुछ भी, चिरकालीन परिणाम कभी नहीं मिटने वाला
1: जी।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी। और तब पापा ने ये नोट कर लिया था, भाग लिया था कि इसको सुर से प्यार है
1: जी।
0: और तब फिर जैसा मैंने पहले कहा वो आगे का प्रवास शुरू हुआ।
1: राइट।
0: खान साहब, मेरे खान साहब ने ख्याल इस शब्द का सही सही अर्थ अपने गाने से उजागर किया
1: जी।
0: उनकी जो शैली थी वो बड़े गहराई युक्त आलाप, संगीतकार की प्रतिभा सबसे ज्यादा निखर के आती है वो आलापी से, तानकारी या लयकारी या सरगम या चमत्कृतिपूर्ण इस तरह की रचनाओं से नहीं। तो खान साहब ने बहुत जल्दी इस चीज का जायजा लिया उनकी कामों में, और आलाप ही लगभग 250 की और आवाज पर इस तरह की कमांड, इस तरह का कंट्रोल कि तान पर में उनकी आवाज मिल जाए और सुनने वाले को एक डिटैचमेंट की फीलिंग आती जाए। तो ये कुछ खासियत मेरे खान साहब की गायकी की रही, जटिल सरगम ताने और संगीत चक्रधर नाम के ग्रंथ में 5020 अलग अलग अलंकार एक्सरसाइजेस के रूप में कहे गए हैं। उसमें से खान साहब ने लगभग 168 चुन के उसका अभ्यास किया एंड ही हैड मास्टरी ओवर ऑल दिस। मैं ये इसमें बड़ा गहरा विश्वास है कि गाने वाले को केवल आवाज का ठीक होना, आवाज का अच्छा होना या मधुर होना या तानकारी करना इतना इससे पूरा नहीं होता है, और भी चीजें इसमें है। साइमल्टेनियसली इट्स अ सेरेब्रल एक्टिविटी आल्सो।
1: ओके।
0: और फिर आवाज अच्छा होना, मैं स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर ने शरीर की रचना की तब सबसे ऊपर ब्रेन को रखा, नीचे गला, कंठ, षड्यंत्र, उसके नीचे हाथ और सबसे नीचे जहां से आपकी भावनाओं का उद्गम है ऐसा हम लोग कहते हैं वो सोल या हृदय, वो जो स्थान है। अब आपके स्वरों में किसी भी रचना के साथ आप अपने आप को अगर जोड़ देते हैं गाने बजाने के लिए, तो आपके स्वरों में अगर उतनी तीव्रता नहीं होगी, वो इंटेंसिटी नहीं होगी, ये कब होगा जब तीनों आपका दिमाग, आपका गला और आपके इमोटिव कंटेंट्स, फीलिंग्स, भावना, ये साथ में ही चलेंगे सिंक्रोनाइज्ड वे में, तब तक वो प्रभावी गाना बजाना नहीं होगा ऐसे मैं मानता हूँ। और इसका पुरस्कार अमीर खान साहब ने किया। तब तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा, क्योंकि तब झलक गायकी, चमत्कृतिपूर्ण गायकी लोगों को आकृष्ट करने के लिए, राजा महाराजाओं का पैटर्नेज खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे लोग बाहर गाने बजाने लगे थे रंगमंचों पर। वैसे ही शास्त्रीय संगीत ये रंगमंचों पर गाने की विधा नहीं है ऐसे मैं मानता हूँ। चैम्बर म्यूजिक हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोपोगेटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉपुलराइजिंग इट।
1: ओके।
0: तो खान साहब ने बहुत लगभग अपनी सारी जिंदगी में कम से कम 2500 से 3000 महफिलों में गाया हुआ है। और केवल कलकत्ता नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहर, यूरोप, अमेरिका और अफगानिस्तान बार बार जाया करते थे। अफगान नरेश को उनका गाना बहुत पसंद था
1: जी।
0: इस हिसाब से इस गायकी का

0: अब जो एक नया रूप प्राप्त हुआ गायकी को उमर खान साहब की इस कंट्रीब्यूशन की वजह से एक अनोखा और एक वर्ग उमर खान साहब को मानने वाला पैदा होता रहा। गायक वादकों में जो गंभीर प्रकार का संगीत करते हैं, संगीत सभी अच्छा ही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सीरियसनेस ऑफ म्यूजिक, सीरियसनेस ऑफ ईच नोट, सिस्टमेटिक इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ईच नोट, और उस स्वर को अलग अलग कितने एंगल्स से आप देख सकते हैं, ये जो नजर अमीर खान साहब ने दी वो रैपी में उन्होंने ढाली और तानों में भी। अच्छा, ये सब करते हुए कभी कर्ता भाव, ये कभी सुनने वाले के प्रति इतना हो, इसका भी ध्यान अमीर खान साहब ने रखा, जो बहुत आगे की स्टेज है सर मानता।
1: बिल्कुल, तो यू टुक अस टू अ लॉन्ग जर्नी, थैंक यू। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस गौरवशाली यात्रा में आपका योगदान एक टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में रहा है। आकाशवाणी अहमदाबाद के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है, तो आप किस तरह याद करते हैं इस जुड़ाव को और इस मंच ने आपकी कला को किस प्रकार आकार दिया?
0: आकाशवाणी मेरे जैसे साधक में कहता हूँ खुद को, संगीत की साधना में अनेक कलाकारों को बहुत बड़ा बनाया। आज मैं जो कुछ हूँ वो केवल आकाशवाणी की वजह से हूँ। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसार प्रचार में और इसको राजमान्यता देने के लिए आकाशवाणी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सहभाग है, वो अमिट है, अनपैरेलल है। आज शास्त्रीय संगीत जो जिंदा है हिंदुस्तान में, वो केवल आकाशवाणी की वजह से, ये भूलना नहीं चाहिए। अब ये एक बहुत जिम्मेवारी सिखाने वाला माध्यम है। आप आवाज के जरिए सबको विदित कर रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी के समाज से जुड़े हुए सारे वर्गों में, सारे क्षेत्रों को आकाशवाणी अपने सारे दिन के कार्यक्रमों को सूची में ढाल देता है। आप शुरुआत भक्ति संगीत से करें, अंत शास्त्रीय संगीत तक, इसमें लेबर प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स और विज्ञान से जुड़ी चीजें, विज्ञान के परवेज जो कोई प्रोग्राम्स है, प्रौद्योगिकी से जुड़े,
1: खेल जगत भी आ जाता है,
0: खेल जगत आ जाता है, मैंने एक भी क्षेत्र अछूता नहीं है
1: जी।
0: और अगर आप रेडियो में आज भी आकाशवाणी की न्यूज अगर सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो आवाज की जो गंभीरता है, यू स्टार्ट इमीडिएटली विजुअलाइजिंग दैट इज बीइंग टोल्ड, यू आर लिसनिंग टू। तो ये आवाज का सख्त माध्यम आकाशवाणी में इसका असाधारण महत्व है। आकाशवाणी आपको अनुशासन सिखाता है, आकाशवाणी आपको संस्कारित करता है
1: जी।
0: और मैं धन्यवाद करता हूँ कि और सौभाग्य रहा कि आकाशवाणी के साथ इतना लंबा जुड़ाव मेरा सन 1992 से 2025 तक, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ।
1: तो पंडित जी, आपका पहला जो आपने यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया होगा आकाशवाणी के स्टूडियो में, वो आपको याद है?
0: वैसे इसके पहले मैं आकाशवाणी के ही अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता होती है, जो राष्ट्रीय कक्षा के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, वही मान्यता है इसको, और उसमें दो ही क्रमांक दिए जाते हैं, पहला और दूसरा, तीसरा होता नहीं है। और अगर दूसरे के लायक है तो प्रतिभागी को दूसरा ही स्थान दिया जाता है, पहला नहीं दिया जाता है, वो बड़े करते हैं। तो मैं 1985 इंटरनेशनल यूथ ईयर, उसमें आकाशवाणी के शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता में ख्याल गायन में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ मुझे। तब से मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गाता रहा हूँ।
1: तो हमारे श्रोताओं के लिए ख्याल गायन

0: वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो पंडित जी जब आप कोई राग प्रस्तुत करते हैं तो आलाप, बंदिश, बोल, तान और लयकारी के बीच संतुलन कैसे तय करते हैं?
1: समय से समय मर्यादा अगर दी जाए तो मैं आपको समय के प्रदूषण में कहूं, आकाशवाणी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही
0: जी।
1: और आकाशवाणी आपको समय का सूक्ष्म ध्यान भी सिखाता है। इस लिहाज से कि अगर 29 मिनट का आइटम आपको गाना है तो आप 18-19 मिनट तक आलापी करेंगे, बाद में सिस्टमेटिक इम्प्रोवाइजेशन करते हुए थोड़े से चढ़ी लय के सरगम, लय के और ताल के अंकी, उसके बाद ताने और फिर मध्य में या द्रुत की बंदिश शुरू हो जाती द्रुत ख्याल। अब ये संयोजन
0: मतलब ये मैनेजमेंट कैसे करते हो, वही मुझे पूछना था। आप बात तो की पर
1: लेकिन
0: खुद इसको मैनेज कैसे करते हैं?
1: तय करके कोई चीज कभी होती नहीं है, दैट मोमेंट स्पॉन्टेनियसली हो जाता है।
0: ओके, तो कई संगीत प्रेमी आपके विलंबित ख्याल को बहुत पसंद करते हैं। आप एक बड़ा ख्याल की रचना कैसे करते हैं ताकि वह 45 मिनट तक से ज्यादा तक आप उसका विस्तार करते रहते हो?
1: हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि मंद्र सप्तक, गायक वादक को मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताल सप्तक, इन तीनों सप्तकों में अपनी आवाज फ्लुएंटली चले, तरलता से चले और उसका परिणाम सुनने वाले की मानसिकता पर, मानस पटल पर चिरकाल टिकने वाला रहे, इसका ध्यान रखते हुए आवाज का रखाव, हर एक स्वर का लगाव, हर एक स्वर को संत गति से अलापी करते हुए और सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन, अनफोल्डिंग ऑफ रागा, राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए तार सप्तक तक जाके ज्यादा से ज्यादा तार गंधार तक आप पहुंच के आवाज को स्ट्रेन नहीं देते हुए, और ये एक बहुत बड़ा विषय है वॉइस कल्चर, तो जिसका अनुसरण मुझे पापा ने ये शुरुआत में यही करवाया, तो उसके फलस्वरूप ऐसा है कि कम से कम 2.5-2.5 सप्तक तक आपकी आवाज बड़ी आसानी से आ जा सकती है।
0: क्या बात है,
1: अवरोह आरोह में।
0: ओके,
1: तो और फिर ताने अलग अलग प्रकार की, मुझे फॉरवर्ड ट्रेनिंग म्यूजिक की मैंने किसी परीक्षा या विद्यालय में जाके कभी सीखा नहीं, इसलिए मुझे बेसिकली एक ट्रेनिंग का भाग था, शिक्षा का भाग था कि राग का आरोह

0: और फिर बंदिश कहते और बोलते कि अब चलो अपने आप सोचो और गाओ।
1: अच्छा,
0: उसके माने अभी पता चलते हैं बाद में कि वो ये चाहते थे कि मैं खुद सोचने लगूं।
1: ओके,
0: राग को लेकर, राग की प्रकृति को लेकर। तो गायक वादक राग की प्रकृति को ही देखते हुए लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है, राग की प्रकृति को ही गाना होता है। तो उसको समझ के सोचते हुए, अनेकों बार सोचने के बाद उस समय राग की कौन सी प्रकृति आपके सामने आती है, कौन सा रूप आपके सामने आता है, वो गाने बजाने की विनम्र कोशिश हमेशा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट रिगरस ट्रेनिंग।
0: आई डोंट थिंक मैं अभी ये पूरी तरह कर पाया हूँ, लेकिन
1: फिर भी
0: प्रयास तो जारी है।
1: बिल्कुल। क्या आप अपनी बंदिशें खुद बनाते हैं? किसी बंदिश में ऐसी क्या बात होती है जो उसे पीढ़ियों तक गाए जाने लायक बनाती है?
0: नवरसों को ध्यान में रखते हुए वाद्यकारों ने संगीत की बंदिशें रचनाएं की अलग अलग रिदमिक साइकिल्स ताल में निबद्ध, क्योंकि कंटेम्परेटिव म्यूजिक का पुरस्कार और उसका अभ्यास मुझे बहुत भाया, और रचनाओं में केवल श्रृंगार को मद्देनजर रखते हुए रचना न हो, ईश्वर को समर्पित
1: जी,
0: उसमें फलसफा भी हो, फिलोसफी भी हो
1: जी,
0: और माइक्रोफोन के डायफ्राम को जो अक्षर है
1: जी,
0: जो ब्लास्ट करते हैं उनको टालने का कसब रचनाओं में, रचना आपकी ऐसी हो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की समाप्ति के पहले पेश है पंडित जी की

0: इसका शब्द है रसना नहीं तो भाई
1: हाँ।
0: तो मेरा बनाने को कैसे गाऊं? फिर अंतरा यह है कि सब दुखियन के दाता तुम हो
1: जी,
0: तब चरण में की आस लगी।
1: ओके,
0: ये बसंत मुखारी में कोशिश है, राज सुबह का राज है, दक्षिणार्थ कर्नाटक संगीत में बेस का एक राज है बसंत मुखारी।
1: ओके,
0: उस पर बेस बंदिश है ये।
1: पंडित जी, आपने अपने अनुभव साधना और अमूल्य विचारों के माध्यम से आज हमें संगीत की गहराइयों से परिचित कराया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर संगीत कार्यक्रम में हम आप सुन रहे थे पंडित महेंद्र टोके की मुलाकात। प्रसारण आकाशवाणी ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भोज केंद्रों पर से करवाया उपयोग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक काइज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने यूनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए।

0: रीवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द बिना कारण, रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council, speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday. India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defense Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today jointly inaugurated the Indian War Memorial at Injingak Park in Seoul. Constructed as part of the commemorative events marking the 75th anniversary of the Korean War, the memorial stands as a tribute to the courage, sacrifice and humanitarian service rendered by the 60 Para Field Ambulance of the Indian Army and the Custodian Force of India during the war. Highlighting the transformative potential of artificial intelligence in reshaping healthcare systems, Union Health Minister Mr. Jagat Prakash Nadda has said

0: यह वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई पैद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने यूनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस मार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
5: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड, भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
6: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधिया है। उम्मीद आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
5: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।

0: रकबे बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहला पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक, लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं। तब जाकर चाय की पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, हम कहीं विरासत की, उम्मीदों में भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। याद रखें रविवार

0: की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलानी ने कहा कि दोनों देश इस कार्यक्रम के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग

समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यून ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमित विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरिया संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरिया संयंत्र में लगभग 46 से 47,000 टन LPG

0: सचिव सुरेश शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। उत्तर पूर्व परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंडल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अब तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on the India-Middle East.

So to tell him that you paid 34 things with somebody, I shall go say and let my Henry Kapoor has normal. कार्यक्रम में हमें हमारे बुड्ढा मिल गया फिल्म गीत आशा भोसले एंड किशोर कुमार

0: Jason, la sobretot a Kevin Jason.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारी वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: जो अधिकारियों में निर्णय से संतोष न था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्याय निर्देशकों से। फोन नंबर 0709-232-5409।
1: श्रोता मित्रों, हमें संभाले चिमनलाल कुमारियानाज कंठे रविराम ने आ रचना।

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। सभ खां अवल अहम ख़बरूं। भारत ऐं इटलीअ विच में आर्थिक लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अंगण खे वधीक तरक़ी याफ़्त बणण ते रासपो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अॼु नई दहलीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु ऊच सतही सलामती जाइज़ा बैठक कई। मर्कज़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एफएओ एग्रीकोला मेडल से नवाजन ते खुशी जाहिर कई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरबराई वारी काबीना जो विस्तार। मंत्रिमंडल में हाने चयन महिलाओं समेत कुल 30 मेंबर। आईपीएल क्रिकेट में अज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स जो मुकाबलो चेन्नई सुपर किंग्स से। खबरू तफसील सां बुधंदा। भारत ऐं इटली वापार सीरप ऐं रसद सीरीज़।

0: मजबूती वास्ते भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अंगण के वधिक तरक्की याफ्त करण ते रास्पो जाहिर कयो। हिक गडल बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए इटली जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अंगण ते सहकार जी पहंजी कौलबद्धता दोहराई। बिन्हीं अगवानन भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अंगण के एक मुख्य राब्तो ए आर्थिक अंगण बुधायो जेको भारत विच ओभर ए यूरोप के गंढे थो। प्रधानमंत्री इन गाल के दोहरायो त गाल बोल ए सिफारतकारी अग्या वधण जी वाहिद वाट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो,
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली जी प्रधानमंत्री चयो तो उन्होंने खितन विच में आपसी जुड़ावा के मजबूत करण एक अहम अग्रही बनल है। हुन चयो त बई मुल्क इन अंगण जे विकास जी मजबूतीअ सां पुठिभराई कनि था। इन विच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजनि मुल्कनि जी कामयाब यात्रा खां पोइ पंहिंजे मुल्क वापस मोटियो आहे। श्री मोदी मुतहद अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ऐं इटलीअ जी यात्रा ते हो। मर्कज़ी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अॼु नई दिल्लीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु हिकु आला सतही सलामती बैठक कई। बैठक जे दौरान इहा ॼाण साम्हूं आई आहे त रेलगाॾियुनि में वेझड़ में ई लॻल बाहि वारनि वाकियनि जी शुरूआती जांच में असामाजिक अनासर शामिल आहिनि। वज़रात चयो त अहिड़नि वाकियनि खे संजीदगीअ सां खयो वियो आहे ऐं रेलवे सलामती अमलो RPF इन जी सरगरम नमूने जांच करे रहियो आहे। सलामती जाइज़ा बैठक दौरान बहितर रिपोर्टिंग सिरिश्ते ज़रिए खुफ़िया ॼाण गॾु करण जे तंत्र खे मज़बूत करण ते ख़ासि बल ॾिनो वियो। ज़रई ऐं हारी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अॼु चयो त भारत ज़रई उत्पादन वधाए खाद खुराक सलामतीअ खे मज़बूत करे ऐं लखे हारियुनि जे जीवन में शफ़ी बदिलाउ आणे करे विश्व जे साम्हूं हिकु नओं मिसाल पेश कयो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे रोम में खाद खुराक ऐं ज़रई संगठन FAO एग्रीकोला मेडल सां नवाज़ण ते ख़ुशी ज़ाहिर कंदे श्री चौहान चयो त इहो एजाज़ नए भारत जे वधंदड़ मान सम्मान जी निशानी आहे। चौथो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन अफ्रीका जे कुछ हिस्सनि में खराब सेहत जी सूरत हाल के ध्यान में रखंदे मुलतवी कयो वियो आहे। इहो सम्मेलन 28-31 मई ताईं नई दिल्लीअ में थियणो हो। विदेश वज़रात ॿुधायो त भारत अफ्रीकी संघ जो अध्यक्ष ऐं अफ्रीकी संघ कमीशन विच में सलाह मसलियत खां पोइ इहो फ़ैसिलो वरितो वियो। तमिलनाडु में जोसेफ विजय जे सरबराहीअ वारी सरकार अॼु पंहिंजे मंत्रिमंडल जो विस्तार कयो। मंत्रिमंडल में 23 नवां मंत्री शामिल कया विया। इन में कांग्रेस पार्टीअ जा 2 मेंबर बि शामिल आहिनि। इन वधाव सां गॾु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय खे मिलाए मंत्रिमंडल में कुल अदद वधी 32 थियो आहे। इन नई वधायल काबीना में 4 महिला मंत्री बि शामिल आहिनि। अॼु सुबुह लोकभवन में मुंतज़िम हिकु समारोह में गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर नवनि मंत्रियुनि खे पद ऐं राज़दारीअ जो हलफ खणायो। हिकु अहिवाल नुमाईंदे खां
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्य ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ही खबरों तवां आकाशवाणी ता बुधी रहा आहियो। ही खबरों तवां असाजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते बुधी सको था। वधिक खबरों जे लाए तवां असाजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था। ओलह बंगाल सरकार राज्य जे सभिनी मदरसनि में सुबुह जी प्रार्थना सभा दौरान वंदे मातरम गीत तुर्त असराइते नमूने लाज़मी कयो आहे।

0: जो हुकुम मदरसा तहलीम डायरेक्टोरेट द्वारा जारी कयो वियो आहे। अमलदारन बुधायो त इन कदम जो मकसद विभाग जे तहत ईंदड़ सभिनी तहलीमी इदारनि में प्रार्थना सभा जे अमल में हिक जहिड़ाई आणण आहे। सेहत शेवा डायरेक्टोरेट जनरल इबोला मर्ज खां मुतासिर मुल्कनि खां ईंदड़ ऐं गुज़रंदड़ यात्रियुनि वास्ते हिक एडवाइज़री ज़ाहिर कई आहे। उन मुताबिक कांगो जमूरी गणराज्य युगांडा ऐं ॾखण सूडान समेत मुतासिर मुल्कनि जी यात्रा कयल यात्रियुनि खे बुखार, मथे में सूर, नसुनि में सूर, बिना कंहिं सबब खून वहण ऐं उल्टी जहिड़ा आसार हुजण ते तुर्त तबीबी मदद वठण जो अर्ज़ कयो आहे। वाणिज्य ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त आलमी बुहरान विच में भारत जो सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4 खां वधी 6.5% थियो आहे, जेको 140 करोड़ भारतीयनि जी सलाहियत खे ॾेखारे थो। नई दिल्ली में मुंतज़िम अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सालियाने क़यादत इजलास खे ख़िताब कंदे हुन इहा ॻाल्हि चई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त दुनिया भारत खे हिक विश्वास जोगे भाईवार जे रूप में ॾिसी रही आहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ जे 5 मुल्कनि जे दौरे जे बारे में नई दिल्ली में अख़बार नवीसुनि खे ख़िताब कंदे श्री गोयल चयो त इन यात्रा सां समाज जे हर तबके खे फ़ाइदो मिलंदो। अॼु अंतर्राष्ट्रीय चांहि ॾींहुं आहे। इहो ॾींहुं मुतहद राष्ट्र जे खाद खोराक ऐं ज़रई संगठन द्वारा मल्हायो वेंदो आहे। हिन साल जो विषय आहे चांहि जे इस्तेमाल खे बरक़रार रखण ऐं जुड़ियल बिरादरियुनि जी पुठिवराई करण। हिन ॾींहुं जो मक़सदु आहे महनती चांहि पोरियतनि खे हुननि जो हक़ ॾियण ऐं हुननि जी ज़िंदगीअ खे बहितर बणाइण। हिक रिपोर्टर
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय
2: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। अभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मोटो को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है।
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अॼु 135.2 घटी करे 75,183 ते बंद थियो। होॾा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी बि 4.2 घटिजी करे 23,655 ते बंद थियो। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम अहमदाबाद जे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ऐं चेन्नई सुपर किंग्स जो मुक़ाबलो थींदो। इहा मैच अॼु शाम 7:30 खां शुरू थींदी। आख़िर में अहम ख़बरुनि ते नज़र विझंदासीं। भारत ऐं इटलीअ विच में आर्थिक लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अंगण खे वधीक तरक़ीयात बणाइण ते रासपो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अॼु नई दिल्लीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु उच सतही सलामती जाइज़ा बैठक कई। मर्कज़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ खे FAO एग्रीकोला मेडल सां नवाज़ण ते ख़ुशी ज़ाहिर कई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी सरबराई वारी काबीना जो विस्तार। मंत्रिमंडल में हाणे 4 महिलाउनि समेत कुल 33 मेंबर। IPL क्रिकेट में अॼु शाम 7:30 अहमदाबाद जे नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबलो चेन्नई सुपर किंग्स सां थींदो। आकाशवाणी तां सिंधी समाचारनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो। नमस्ते।
3: આવતીકાલે ભુજ અને દિલ્હી વચ્ચેની નવી દૈનિક ટ્રેન સેવાનો આરંભ કરવામાં આવશે। રેલવે મંત્રાલયે પ્રવાસીઓની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ભુજ દિલ્હી વચ્ચે એક્સપ્રેસ ટ્રેન નંબર 19403 અને 19404ને મંજૂરી આપી છે। આ ટ્રેન બુંદરી ચાલોર થઈને દિલ્હી પહોંચશે, જે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને હરિયાણાના વિવિધ મહત્વના સ્ટેશનોને જોડશે। આ નવી ટ્રેન સેવાને રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરાવશે। જ્યારે ભુજ સ્ટેશન ખાતે યોજાનાર કાર્યક્રમમાં સાંસદ વિનોદ ચાવડા, પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર રમેશભાઈ પાંડે સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેશે। આવતીકાલે પ્રથમ દિવસે ટ્રેન ભુજથી બપોરે 4:30 વાગે પ્રસ્થાન કરશે, જ્યારે 23 મે થી આ ટ્રેન ભુજથી દરરોજ સવારે

0: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા. શ્રોતા મિત્રો, પ્રસ્તુત છે બેર ફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ. પણ આ કાર્યક્રમનો આરંભ કરે તે પહેલા સાંભળીશું આ વિજ્ઞાપન.
1: શું તમે જાણો છો કે સરદાર શ્રી રાજીવભાઈ વિધાનથી.
2: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં ફરહત નાઝ. भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई. एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई.
3: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
2: इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों

शीर्ष गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार

0: नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यून ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंपअप किया गया है। लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला गर्वो के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ते स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रस्तुत छह आज में मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुटनी अंगे रचायेली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी न सभ्यों आज गांधीनगर में बार काउंसिल ऑफ गुजरात न प्रतिनिधिमंडल साथ मुलाकात करी। ब्रिक्स 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में शुरू थी। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय सरकार ने मंत्रिमंडल नु विस्तरण। विश्व आरोग्य संगठने जणाव्युं कि इबोला वायरसना खास प्रकार सामे रसी विकसावामां 9 महीना जेटलो समय लागी शके छे। सरकारे ग्रामजनोनी सुखाकारीमां वधारो करती नवी अटलवाड़ी योजनाने मंजूरी आपी। केन्द्रीय आरोग्य मंत्रालय विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत देशभरमां टाइप 1 डायाबिटीस धरावता बाळको माटे एक विशेष अने नवी गाइडलाइन जाहेर करवामां आवी। कच्छना 126 टाइप 1 डायाबिटीस ने बाळकों ने तमाम सारवार मफत मळशे। जनरल हॉस्पिटल में ल्यूपस अंगे मार्गदर्शन अपायु। महिलाओं में त्वचा ना स्वयं प्रतिरक्षा रोग नु प्रमाण वधु। अंजार में 8 मध्यान्ह भोजन केन्द्रों खाते संचालकों ने जगह भराशे। चालू मास की 30 तारीख सुधी अरजी करी शकाशे। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अंजार में शुरू थशे नवी ब्लड बैंक। इमरजेंसी में स्थानिकों ने भूज और गांधीधाम सुधीना धक्का बचशे। कच्छ शक्ति नेशनल एवोर्ड 2026 ना विजेता जाहिर कराया। आवतीकाले 22 महीना रोज आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की उजवणी करवामां आवशे। राजस्थान और दिल्ली सुधीनी यात्रा सुगम बनशे। आवतीकालथी भूज दिल्ली वच्चे नवी दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन नो आरंभ। गांधीधाम नामद्वार कचेरी पासपोर्ट वाहन सेवा नो प्रारंभ। आज आंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की कराई रही छे उजवणी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने अमदावाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स सामे मुकाबला।

0: मुख्य समाचार पूरा थया।
1: फोन नंबर 0739 2258 409। शुरू करने जा रहे हैं कि पीएम पोषण योजना अंतर्गत प्राथमिक

श्रोता मित्रों, कार्यक्रमना अंतमा सांभळे चित्रसिंहना कंठे फरी एक गोरखपुरीनी आ रचना।

आकाशवाणी समाचार यशवंत मेहता वांचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर ने वधु विकसावा भारत और इटाली सम्मत थया। देश में क्रूड पेट्रोल डीजल कुदरती गैस और एलपीजी ने पूरतो पुरवठो होवानी केन्द्र सरकार ने खातरी। नवी दिल्ली में योजनारी चौथी भारत आफ्रिका फोरम समिट मौकूफ। बीआरआई महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 120 करोड़ रूपया की कीमत की ई सिगारेट जप्त करी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स वच्चे मुकाबलो। भारत और इटाली व्यापार रोकाण और पुरवठा श्रृंखला स्थितिस्थापकता मजबूत बनावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर आईएमईसी ने वधु विकसावा सम्मत थया। एक संयुक्त निवेदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तेमना इटालियन समकक्ष जियोर्जियो मेलोनीए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर सहयोग करवानी तेमनी प्रतिबद्धता नो पुनरुच्चार करी वैश्विक व्यापार जोड़ाण और समृद्धि ने फरीथी आकार आपवा और प्रोत्साहन आपवा माटे तेनी परिवर्तनशील संभावना व्यक्त करी। रोम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे संयुक्त पत्रकार परिषद में इटाली प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनीए आईएमईसी ने यूरोप मध्य पूर्व और भारत ने जोड़ते एक मुख्य कनेक्टिविटी और आर्थिक कॉरिडोर बनाव्यो जे व्यापार रोकाण और पुरवठा श्रृंखला स्थितिस्थापकता ने मजबूत बनावा क्षमता धरावे छे। केन्द्र सरकार आज फरी एक बार खातरी आपी हती के भारत में क्रूड पेट्रोल डीजल कुदरती गैस और एलपीजी नो पुरवठो पूरतो छे और रिफाइनरी मांग ने पहुंची वरवा माटे श्रेष्ठ क्षमता पर कार्यरत छे। एलपीजी उत्पादन में वधारो करवामां आव्यो छे और रिफाइनरी में दररोज लगभग 46

बात हो रही थी एक पेंसिल जान बची। लेखक विष्णुदत्त बाल, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। आवाज का हवाना कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

सारी बातों में उलझा, ऐसा उलझा दिया इस फिल्म से ये दुर्लभ सिंगर थे। रोमी और तनिष्क बागची की आवाजों ने मेरे जी आवाज़ अपने से लिखा था और म्यूजिक तनिष्क बागची।

0: Yüzündeki parlak yaş yüzüğü bir kez sürülebilirdi. Kuşkun onu hep sürüldü sanacak.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट गए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।

0: कंट्रीब्यूशन है, यानी ओला मेडल से उनको सम्मानित किया है, इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है ये ऐसे उन्होंने कहा है, कुमारी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल के आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से उसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या FCAT.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंपअप किया गया है। लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार

0: इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपिलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुँचाते हैं। जब मिल जाएगा सबको अपना मिक्सर मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीवी की हार।
1: इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अंतरिक्ष आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
4: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोले को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोले ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था।

0: क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16 ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क के लायन हुडमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: सौ में चलती है, बहुत अच्छे से में चलती है, बाकी राजधानी 134 पे चलती है, मेट्रो 110 पे चलती है, पैसेंजर्स 100 और इस तरह के नेटवर्क में इजाफा 160 से पहली बार 220। तो ये एक बड़ा जंप है इंडियन रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए और इंडिया के।
1: ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। एक आम ट्रेन और हाल ही में चल रही वंदे भारत ट्रेन की तुलना में ये सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट किस तरह से अलग और खास होगा?
0: जैसा मैंने आपको बताया,

0: Simplemente haciendo esto, yo quité 50 mil, yo empecé a hacer un señor de hacer de ti, yo le era tracing. Fue la izquierda la absoluta. Yo le daría a mi hermano, no hay que ser informe, se volverá a volver a hacer teja, andaba a volver a hacer teja, yo le daría a tus ideas a hacer teja, andaba a volver a hacer teja, ahora le dice, mira, es que por lo que se hace de hacer
1: teja. Eso. Chuta mi tro, andaba a volver a hacer teja, la apetía ese proyecto, dice, nada ni el tendría de volver a mentir. श्री अश्विनी विष्णु जी पर महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ना विजन अने भविष्य नी योजनाओ अंगे विशेष माहिती आपे छे। तो चालो सांभळीए आ प्रोजेक्ट अंगे शुं कही रह्या छे रेलवे मंत्री श्री अश्विनी विष्णु।
2: आप रेलवे में तो देखो तो कन्वेंशनली 110 केएमपीएच की ट्रेन चलती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 केएमपीएच की, और नव भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चली है जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन

0: ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहां से होते करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुंच सकेंगे। अच्छी बात यह हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन गया है उसमें लैंड एक साथ अक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2,40,00,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग अबाउट 10,00,000 ट्रीज। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी खास और नई भारतीय तकनीक का उपयोग होने जा रहा है सर?
1: जैसा हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सर ने कहा, पहला तो बॉर्डिस का वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड है, जितने भी वर्ल्ड के सेमी हाई स्पीड है वो स्टैंडर्ड है इसके। दूसरा कि इसमें पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रैक है वो एलिवेटेड पचपन परसेंट के एरिया में है, बाकी के प्रोजेक्ट में वो या तो ट्रैक पे है या लैंड पे है या कटिंग है। तीसरा कि ये पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है जिसमें फ्रेट और कोचिंग मतलब पैसेंजर साथ में जा सकते हैं। और चौथा क्योंकि इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम लग रहा है वर्ल्ड में कहीं भी सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो या तो जापानीज टेक्नोलॉजी का लगे या तो फिर ETCS का लगे यूरोपियन टेक्नोलॉजी का लगे, लेकिन पहली बार अपना डेवलप किया हुआ कवच सिस्टम कवच 5.0 वो लगने जा रहा है।
0: जी सर, ये प्रोजेक्ट देश भर के भविष्य के सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए एक पायनियर या रेफरेंस मॉडल बनने वाला है। एक मॉडल के रूप में इस प्रोजेक्ट की कौन सी विशेषताएं अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी?
1: ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क जो कि बॉर्डर में बन रहा है, वर्ल्ड का भी पहला है। तो अब जैसे मेरठ का जो हमारा आरटीएस बना है उसमें इंडियन रेलवे की ट्रेनें भी जा सकती है, तो ये ऐसा नेटवर्क है कि कहीं से

0: सिंहासन बाहर निकला।
1: सिंह अहमदाबाद से धोलेरा जाने में सड़क मार्ग से काफी समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लोग सुबह जाकर शाम को वापस लौट सके, इसके लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और स्पीड की क्या योजना रहेगी सर?
0: इसमें जो भी ट्रेनें चलेंगी वो 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी, स्टॉपेजेस इसी तरह से डिसाइड किए जाएंगे और दोनों ट्रेन जो कि धोलेरा SIR को जाएगी

0: जी सर, 134 किलोमीटर के इस नए नेटवर्क को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण या अन्य कोई भौगोलिक या बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां हैं सर?
1: चुनौतियां भी हैं क्योंकि पहली बार इस तरह से किया गया जब रोड बनाया जा रहा था एनएच का बलेरा एक्सप्रेस हाईवे, उसी समय भी ये अवधारणा की गई थी कि इसको हाईस्पीड रेल नेटवर्क बनाना है, रेलवे को उसको बनाना है, तो 30 फीट का ट्रैक जो है अलॉन्ग द एनएच वो प्रोवाइडेड है और इसमें जो एरिया तो बचा है वो एरिया जहां जहां हम लिंक करने वाले हैं स्टेशन से, अभी कंजेस्टेड स्टेशन से, वहां पर बनेगा और उन्हें लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं और प्रोएक्टिव वे में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे काम कर रही है और सक्सेसफुली जल्दी ही काम को करेगी।
0: जी सर, इस प्रोजेक्ट को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान में अहमदाबाद डिवीजन द्वारा इसके एग्जीक्यूशन के लिए शुरुआती कदम क्या उठाए जा रहे हैं?
1: इसका जो नेटवर्क है इसको एक लैंड एक्विजिशन के बाद इमीडिएटली

0: सोच कर सकते हैं। अहमदाबाद को ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
1: जी सर, अंत में अहमदाबाद और गुजरात की जनता को इस विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट के संबंध में डीआरएम के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे?

0: कैसे बना ये गाना
1: समाचार करने का कलाम सर जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है उसने गाना सीखा नहीं मुझे ऐसी आवाज
0: संगीतकार हया
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई यहाँ बुलाया गई सजेशन आई के साथ एक आवाज है तब्बन मिर्जा साहब बुलाया उनको सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कवाल साहब को बेमिसाल दादा आई जंजीर की झमका खुदा खैर तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का

जल्दी वाली फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

उनके युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी।

व्यक्तियों परिस्थितियां दिखाई गई थी। उनकी कक्षा में कहा था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, न ही उम्र का मोहताज होता है। प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। वीर जारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थी, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: के ऊपर भी अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कार्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बहाने के पहले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बहाने

0: आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली के प्रतिभा को। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: आएगी।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टकराव फिल्म रफ्तार वाली फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही ड्रामा, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो चाहे इसकी कहानी हो।

तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परंदे और मनीष शर्मा की फिल्म

चोपड़ा ये शॉट फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की कबीर खान निर्देशित एक था

यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके

चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हरीशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाह अली की फिल्म किल बिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं

की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक

0: आंसू की तरह थे वो ऊंची सी दीवार
1: थी वहीदा रहना
0: और बीच में एक गैप था मिट्टी जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना मिलने का इरादा है तो आपको वो भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मैं गैस जाते जाते इस दीवार से जाते हुए चेक कर जाऊँ मेरी तो बोलती है क्या ज्यादती है भाई तो भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है ये कैसे हो सकता है तो बड़ी टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने शुक्र है गिरे मैंने
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रस्तुत
1: ये है वडोदरा की राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी भावना।

कहा जा कि रात में बाहें खोल रखी है मेरे लफ्जों में, तेरे लिए नमी खोल रखी है, तेरी एक झलक को परोसती है ये निगाहें। जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

मंजिल से जब बोझिल सी हो जाती है, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती है। माथे की बुनिया जब चुनों को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर मुझे भी मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।

0: रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल साथ।
0: भारत की आवाज़, भारत का देश, भारत का।

मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी रघुनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगी रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोते रोते माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मैं घूम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 7500 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली में व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आर्थिक कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मॉडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।